0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो हम किसी हेल्प से चाहोगे? गुड मॉर्निंग
1: मैम।
0: ठीक है। From BCI, the county of one male, 12.9 on the start.